0: देशवासियों की ओर से नमस्कार।
1: Hola y saludos a todos.
2: Bonjour tout le monde.
3: Hello from the children of